0: ते फिर होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है।

वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: 9:02 ते शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम सुर साधना दे विच अज कलाकार उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादन करनगे। राग होएगा नट भैरव। ज्ञान विज्ञान साइंस मैगजीन का यह प्रोग्राम 9:30 पेश किया जाएगा। अज दे विच डॉक्टर गुरिंदर दीप सिंह होरी औषध वाले पौद्यां दा विज्ञान इस बाबत वार्ता करनगे अते विज्ञान दे होर तत्थ ते खबरां उत्ते गलबात करनगे। हैलो फरमाइश, इस प्रोग्राम दा समा होएगा 10:02। ग्यारह बजे तुसी साढ़े दिल्ली केंद्र तो मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देशवासियों लई प्रसारण मन की बात सुन सकोगे। और ठीक उस तो बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देशवासियों लई प्रसारण मन की बात का पंजाबी रूपांतरण सुनाया जाएगा। बाल जगत ये प्रोग्राम तुसी सुन सकोगे 12:05 ते। फौजी वीरां लई प्रोग्राम का समा लगेगा 12:15। और रंगली धरती जिहदे विच अज तुसी हरदेव सिंह कवल ते उहनां दे साथियां वालों गाए लोक गीत सुनोगे 2:30। बाद 4:02 ते समा होएगा स्पैक्ट्रम 4 का। बाकी सारे प्रोग्राम अपने मिथे समय सिर उस तरह चलते रहेंगे। शाम 6:30 तुसी साढ़े प्राइमरी चैनल ते ICC वूमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दे भारत अते ऑस्ट्रेलिया मैच दी कमेंट्री लाइव सुन सकोगे। और साढ़े मोबाइल ऐप ते तुसी देहाती प्रोग्राम दा आनंद ले सकते हो। मोबाइल ऐप ते 8 तुसी मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियों लई प्रसारण दा मुड़ रूपांतर सुनोगे। और 10 समा होएगा रविवासरी है अखिल भारतीय संगीत सभा दा, जिहदे विच पंडित सुधीर पांडे तबला वादन करनगे। ये सीगे साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम। और हुण समा हो गया है समाचार संस्कृत दे विच साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं

0: भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ता विभागस्य अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिंदी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रीय सभां संबोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमंत्री रोष कैमन इत्यत्र राष्ट्रीय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। त्याओ हुण तक दे मुख समाचारां वल एक नज़र मारते हैं। न्यूज़ हेडलाइन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्ण ने कहा है कि MSME खेतर देश की आर्थिकता नू मजबूत करने विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। गृह ते सह

उठो कि देखो कैसा हसीन नज़ारा है, हवाओं में बहता सुखद ये इशारा है, नई सुबह लेकर आई है नई सी उम्मीद, आज का हर पल बस आपका और हमारा है। जी हाँ श्रोतियो, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आकाशवाणी जलंधर ते तुहाडा दोस्त गौरव है तुहाडे नाल। सो एक बार फिर आकाशवाणी जलंधर तुहाडी और मेरी इतना दी सांझ पै गई है, और ये जिहड़ी सांझ है ना, ये वो सांझ है जिहड़े दिल नू दिल दी राह करदी है और तुहानू रेडियो दे नाल मलांदी है। और जिन्होंने भी अजे तक रेडियो ऑन नहीं किया, रेडियो ऑन कर लो, क्योंकि ये आने वाले जेडे 58 मिनट है ना, तुहाडी जिंदगी दे सब तो वधिया 58 मिनट होने वाले ने। प्यारे श्रोताओ, चिड़िया दी चहचहाट, ठंडी ठंडी ताज़ा हवा, ते एक खूबसूरत दिन साडे जीवन नू दस्तक दे रहा है। कल की होया सी इनू भुल जाओ, अज एक नवी शुरुआत करो, और अज दी जिहड़ी शुरुआत है बिल्कुल पॉजिटिविटी दे नाल, प्यार दे नाल और ग्रैटीट्यूड दे नाल। ग्रैटीट्यूड मतलब जिन्हों असी पंजाबी च कहने हैं शुकराने दे नाल करनी है। जी हाँ, ईश्वर दा शुकराना, ताकि हर वो चीज़ जिहड़ी सानू मिली है जिहदे वास्ते आपां कुछ कीता नहीं, चाहे वह साह ने, चाहे वह सूरज की रोशनी है, चाहे वह हवा है, इस सारे का शुकराना करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि शुकराना करांगे ना तो होर जिहड़ियां चीज़ां है वो साड़ी झोली दे विच ईश्वर वालों आ जांदियां ने। और शुकराना अगर करना है तो सब तो वधिया चीज़ की है, उहदा गुणगान कर लो, ईश्वर दे नाल जुड़ जाओ, तो असी भी शुकराना करिए अज फिर। तो चलो आओ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं हरिहरन जी दे गाए इस प्यारे जे गीत के नाल।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर के उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालों नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज़ डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे, इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे। सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी।
1: जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जी दी मन की बात दी आज वाली कड़ी जरूर सुनना। और अज होर भी एक खास गल है, अज है 28 जून, तो अज एक ऐसी महान शख्सियत दा जन्म दिहाड़ा है जिन्हों आधुनिक भारत दा चाणक्य भी किया जाता है। मैं गल कर रहा भारत दे 9वें प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव जी दी। जी हाँ, उन्होंने आधुनिक भारत दे चाणक्य अते भारत दे आर्थिक सुधारा दा पितामा भी किया जाता है। और अज दी सोहनी सवेर प्रोग्राम च आओ उन्होंने याद करते हैं, देश दे इस महान सपूत। श्रोतियो, साल 1991 का वो दौर याद करो जब देश दे कोल सिर्फ कुछ ही दिनों दी विदेशी मुद्रा दा भंडार बचिया सी। देश गंभीर आर्थिक संकट सी। ऐसे औखे वेले नरसिम्हा राव जी ने देश की कमान संभाली। उन्होंने राजनीति तो उपर उठ के फैसले लाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नू अपना वित्त मंत्री बनाया, तो देश दे विच आर्थिक उदारीकरण अते नवे सुधारां दी शुरुआत कीती। ये उन्हां दे ही साहसी फैसले सन जिन्हां ने बंद पए भारतीय बाजारां दे बूहे दुनिया लई खोल दिते। अज जेकर भारत आर्थिक महाशक्ति बनन दी राह ते है तां उहदी जिहड़ी नींव है उस दौर दे विच रखी गई। ते हाँ, राव साहब सिर्फ एक माहिर राजनेता ही नहीं सन बल्कि वो एक अद्भुत विद्वान भी सन। कि तुसी जानदे हो उन्हां नूं 9 भारतीय अते 8 विदेशी भाषावां समेत कुल 17 भाषावां आंदियां सन। कंप्यूटर तो लै के साहित्य तक उन्हां दी पकड़ जिहड़ी सी ना वो लाजवाब है। जिवें कि तुसीं आकाशवाणी जलंधर नूं हुण सुन रहे हो ना, तो तुहानूं नरसिम्हा राव जी दा पंजाब नाल भी एक बहुत इतिहासिक कनैक्शन वह भी दस दवां। 90 दे दशक की शुरुआत च जद पंजाब एक बेहद संवेदनशील दौर तो गुजर रहा सी ना, तो राव साहब ने बड़ी सूझबूझ ते धीरज नाल पंजाब च लोकतांत्रिक व्यवस्था नूं बहाल करन दे लई अमन अते शांति कायम करन लई एक बहुत वड्डा रोल निभाया सी। ते उन्हां दे इस योगदान नूं पंजाब कदे नहीं भुल सकता। उन्हां दी दूरदर्शिता, देश सेवा ते महान राजनीतिक कुशलता लई भारत सरकार ने उन्हां नूं देश दे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दे नाल भी नवाजिया सी। अज उन्हां दे जन्म दिहाड़े ते पूरा देश उन्हां नूं सजदा करदा है, नमन करदा है। ते नरसिम्हा राव जी दे जीवन ते ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस,

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, हुणे प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: आप पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो सुचेत रहो।
6: जी हाँ, जानकार बनो और सचेत रहो। और हुण वेला हो गया तुहाडे नाल इजाजत लैण दा। फिर मिलांगे जल्दी ही इसे ही प्रोग्राम दे विच जिहदा नाम है सोनी सवेर। अपने दोस्त गौरव नूं हुंदे हो इजाजत। तुसीं जुड़े होए हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र दे नाल और स्टूडियो घड़ी दे मुताबिक सवेर दे 8 बज रहे ने। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी ठीक 8 बजे तुसीं सुणोगे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ और 8:30 बजे खबरां पंजाबी दे विच। जुड़े रहो साढ़े नाल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते। बस कुछ पल दा इंतज़ार और फिर होएगी समाचार प्रभात।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह

0: में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सशस्त्र के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सशस्त्र के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में

0: साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गई। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक

0: बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
0: फिर तो
1: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
2: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
0: सर इन्हें कितों ले आवां?
2: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
1: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
0: सर 2 लाख
3: की होया पापा?
0: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल जो ड्रग्स मिले हन।
1: ओए
0: कट दिता।
3: घबरान दी लोड नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
0: तां पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहिंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਸੀਹੀ ਭਜਨ, ਜ਼ਮੀਲ ਮਸੀਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी नाल गलबात करेंगे। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पे मन की बात प्रोग्राम में देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे करेंगे। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी में अगले 2 साल में देश भर के 500 शहरों के कस्बों में फैलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सकत्तर चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अस्तीफिया अधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान अज कल नवी दिल्ली में राष्ट्रीय देहाती विकास सम्मेलन 2026 की प्रधानगी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वह कैलाश मानसरोवर यात्रा उदों तक शुरू ना करन जो तक उन्होंने अपनी यात्रा लई लोड़ींदे सारे दस्तावेज प्राप्त ना हो जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों युद्ध नशिया विरुद्ध मुहिम के अगले पड़ा सूरमा मुहिम की शुरुआत। नशा छड़ चुके नौजवान होरना लोगों को नशा छड़न करन की मदद। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने नशिया की दुर्वरतों और गैर कानूनी तस्करी को खत्म करने एक सांझी समाजिक लहर का सदा दिता है। पंजाब सरकार वालों अज सरकारी कॉलेज स्टेडियम गुरदासपुर विखे कराए

एक शाम भगवान शिव के नाम प्रोग्राम से मशहूर गायक हंस राज रघुवंशी भगवान शिव का गुणगान करेंगे। गोवा दे 14 साल एक बार सरजीवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीजा आखिरी ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करते हैं। भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दा के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। यह सन हुण तक के मुख्य समाचार। तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी के जलंधर केंद्र के नाल और समा हो गया है शास्त्रीय संगीत के साडे प्रोग्राम सुर साधना का। अज इस प्रोग्राम दे विच उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादन करनगे। राग होएगा नट भैरव व धुनमांड त्या उस मात फरमानी है।

मुख्य समाचार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। और हुण शुरू होने वाला है तुहाडा सारिआं दा अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम जिहदा नाम है हैलो फरमाइश। तो आओ फिर शुरू कर दें प्रोग्राम हैलो फरमाइश।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: खेडां नूं उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार गिरगिट।

रंग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा हॉकी दी चलाकी दियां रमज़ां बयान करदा खिडारियां दा जनून मैदानां दा रोमांच मैदानां च जित दी खुशी ते हार तों सबक लैण दी दिलचस्प कहानी तुहानूं सुणाउंदा प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 बजे सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किडबैग।
6: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस

चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब
28 करोड़

हमारी माताएं बहनें बेटियां हैं महिलाएं हैं, इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो

वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब 2 स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को

बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। यह हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन

किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें।

0: और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: हुणे तुसी मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात सुन रहे सी। साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, एफएम बैंड 102.7 मेगा हर्ट्स, डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा, डीआरएम 864 किलो हर्ट्स, 100.6 मेगा हर्ट्स विविध भारती, 103.6 मेगा हर्ट्स अमृतसर, 100.9 मेगा हर्ट्स अते 100.8 मेगा हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तो थोड़ी देर बाद मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी दे बठिंडा, चंडीगढ़, लुधियाना ते पटियाला केंद्र भी ए प्रसारण नालों नाल करनगे।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात विच एक बार फिर तुहाडे सारिआं नाल जुड़ के मैनूं बहुत खुशी हो रही है। 2026 दा अद्धा साल बीतण वाला है। इन्हां 6 महीनियां विच असीं मन की बात विच देशवासियां दीआं अनेक प्राप्तियां ते चर्चा कीती है। जून विच भी देश ने कुछ

0: ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। 12 ਵਜੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जाँच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम

ही मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
3: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो, आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
4: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण बच्चे अपना प्रोग्राम सुनेंगे बाल जगत।

0: एक दिन पुराना कां नवे कां नूं कहण लगा, ओए कूं अपने आप नूं बड़ा भलवान समझदा है, तूं ओ मेरे जिन्ना पार चुक के उच्ची उडारी ला के दिखा ते मैं तेनूं मन्ना। तेरे नालों मैं तकड़ा है, नहीं यकीन तां इक्को जिन्ना पार पंजां विच पड़ के उड़दे आं, वेखदे आं ज़्यादा उचाई तक कौन उड़ सकदा है। जिहड़ा ज़्यादा उचाई तक उड़ेगा ओह ज़्यादा ताकतवर होएगा। नवे कां नूं अपनी जवानी ते माण सी। पहला कां नवे कां नाल सहमत हो गया। उसने कहा, तेरी गल बिल्कुल ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि जिहड़ा कां हार जावे ओह इस पिप्पल उत्तों अपना टब्बर तोड़ चुक के किसे होर पासे निकल जावे। बिल्कुल ठीक, नवे कां ने अपनी सहमती दे दित्ती। पुराना कां कहण लग्या, हुण मैं जा के इक्को जिहे भार दियां दो थैलियां बणाउंदा वां, कल सवेरे असीं मुकाबला शुरू करांगे। कां बाकी पंछियां नालों बड़ा चलाक हुंदा है, पर पहला कां तां लोड़ तों ज़्यादा चलाक सी। उसने अपने आलणे विच जा के इक योजना बणाई। उसने दो इक्को जिहियां थैलियां लै के इक विच रूम भर दित्ता अते दूजी विच लूण। उपरों वेखण नूं ओह बिल्कुल इक्को जिहियां लगदियां सन। अगला दिन चढ़िया तां पहला कां अपनी चलाकी करके बड़ा खुश सी। ओह सोच रहा सी कि ओह तां जित्तिया ही पिया, अज शामी ही नवे कां दा बिस्तरा गोल कर देणा। इसे खुशी विच ओह आवाज़ां देण लग्या, ओए आओ ए भलवाना, दिन चढ़ गया है। आए हाँ, काला कानू पैंदा है, दूजे कां ने कहा। एने विच पहले कां ने पिप्पल उपर रहिंदे दूजे पंछियां नूं भी मुकाबला वेखण लई बुला लिया अते दोवां विच लगी शर्त बारे भी दस दित्ता। उसनूं पता सी कि जितना तां उसने ही है। दूजा कां आलणे विचों निकलिया। पहले कां ने लूण वाली थैली उसनूं पंजे विच फड़ा दित्ती अते रूह वाली अपने पंजे विच फड़ लई। दोवां ने जदों थैलियां चंगी तर्हां फड़ लईयां तां इक तोते ने ट्री ट्री करके अपनी सीटी वजा दित्ती। दोवें कां उड पए। पहले कां दी रूह वाली थैली हल्की होण करके ओह तेज़ी नाल उपर नूं उड पिया। दूजे कां दे लूण वाली थैली भारी होण करके ओह हौली हौली उड रिहा सी। दोवां नूं उड़दिआं अजे 10 मिंट ही होए सन कि वेखदिआं ही वेखदिआं काली घटा चढ़ आई ते मींह वसणा शुरू हो गया। मींह नाल पहले कां दी थैली विचला रूम भारा होणा शुरू हो गया अते दूजे कां दी थैली विचों लूण खुरण लग पिया ते ओह हल्की होणी शुरू हो गई। मींह वसी जावे, पहले कां दी थैली भारी होई जावे ते दूजे कां दी थैली हल्की। दूजे कां ने हल्की होई थैली करके उच्ची उडारी लाउणी शुरू कर दित्ती। पहला कां भारी होई थैली करके थल्ले आउणा शुरू हो गया। अखीर उस दी थैली इन्नी भारी हो गई कि ओह जमीन ते पटाक करके डिग पिया। दूजा कां मजे नाल होर उच्ची उडारी लाउंदा रिहा। इस लई कदे भी दूजियां बारे बुरा नहीं सोचना चाहिदा।
1: लो जी प्यारे बच्चों, सानू भी दूसरियां बारे बिल्कुल बुरा नहीं सोचना चाहिदा। और कई बारी असी ओवर थिंक भी कर लैने कि हाँ वह मेरे बारे तो इदा ही सोचता होएगा, पर प्यारे बच्चों ये ओवर थिंकिंग भी सानू कई बारी खराब करती है। सो असी ये बिल्कुल नहीं करनी। और प्यारे बच्चों, ये जिहड़ी AI टेक्नोलॉजी है ये साडे लई बहुत सारे बेनीफिट भी लैके आउंदी है और कई बारी प्रॉब्लम्स भी खड़ियां कर दिंदी है। पर असी उन्हां प्रॉब्लम तो बचांगे किवें जदों सानू AI टेक्नोलॉजी बारे नॉलेज होएगी। असी वैल अवेयर रहांगे, असी रोज़ अखबारां पढ़ांगे, अपने आले दुआले नूं जाणांगे कि की कुछ घटनावां साढ़े आस पास घटदियां पईआं ने और की नवां टेक्नोलॉजी दे विच आउंदा पिया है। और ये प्यारे बच्चों सांझ जिहड़ी है ना वो तुसीं अपने दादा दादी नाना नानी दे नाल भी पेरेंट्स दे नाल भी पाउणी है, क्योंकि तुसीं जिहड़े हो नवीं सदी दे बच्चे हो और तुसीं इस बारे बहुत सारियां चीज़ां जाणदे हो।
2: वैसे सुखदीप वीर जी, बच्चे हुण काफ़ी चीज़ां जाण चुके ने। बच्चों नूं पता है कि सिलसिला नन्नी कलम तो हुण अपने खत्म होण दे पॉइंट ते पहुँच गया है और हुण वेला हो गया कंप्यूटर भैया दी आवाज़ दे विच इक प्यारा जिहा गीत सुणन दा और उस तो बाद नॉलेज टाइम दा पिटारा।

0: बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे।
1: बच्चों जी हैप्पी बर्थडे साडे वालों भी उस बच्चे नू जिदा आज 28 जून नू बर्थडे है और उन्हां सारे बच्चियां नू जिन्हां दा आने वाले हफ्ते दे विच बर्थडे होएगा। तुहानू सारिआं नू बाल जगत दी टीम वालों बहुत बहुत मुबारकां। तुसी चढ़दी कला च रहो, तुसी अच्छा अच्छी पढ़ाई करो, सेहत याबता होवो और मापिआं दा आग्याकार बनो। साडे वालों इही दुआ है तुहानू। ते सुखदीप वीर जी पिटारा खोल लईए।
2: बिल्कुल जी, नॉलेज टाइम दा पिटारा खोलिया जावे और प्यारे बच्चियो अपनियां बिरतियां नू कर लो एकागर, क्योंकि हुण तुहानू असीं बहुत सारी नॉलेज देण वाले आ प्रोग्राम दे अखीर दे विच। ते सब तों पहला रुख करदे आ जी एक बड़े ही खास दिन और इस दिन की महत्ता तुहानू तुहाडे हरप्रीत दीदी दसणगे।
1: दिन है जी 29 जून दा और नैशनल स्टैटिस्टिक्स डे हैगा जी। और यह दिन इस करके मनाया जाता है क्योंकि जेडे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैगे ने उन्हां दा नाम है प्रसन्नता चंद्रा, उन्होंने ऑनर करन लिया दिन मनाया जाता है। उन्होंने एक तरीके का तुसी कह लो कि स्टैट्स की साड़ी जिंदगी दे विच की महत्ता आ, आंकड़िया की साड़ी जिंदगी दे विच की महत्ता आ, उहदे बारे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ला दित्ती और सानू चानना पा दिता कि जिंदगी दे विच आंकड़े अगर ना होंदे तो किन्नियां चीज़ां तो असी वंचित रह जाना सीगा, किन्नियां कैलकुलेशन्स तो असी वंचित रह जाना सीगा। तो थैंक्स है उन्हां दा, 2007 तो यह दिन मनाया जा रहा है। तो बहुत बहुत थैंक्स है प्रसन्नता चंद्रा जी नूं। तो अगे वधीए जी 1 जुलाई वाल।
2: बिल्कुल जी, 1 जुलाई नूं बहुत सारे दिन सैलीब्रेट किए जाते हैं, पर प्यारे बच्चों सब तो पहला 1 जुलाई का जिहड़ा पूरा हफ्ता है ना वह बड़ा ही खूबसूरत बनाया जाता है। वण महाउत्सव उस पूरे हफ्ते दे विच मनाया जाता है और प्लैन किया जाता है कि वध तो वध रुख लगाए जान। और हरप्रीत देखो, ये जिहड़े रुख लगाउण दी मुहिम है ना वह भी हुण बहुत ज़्यादा वधदी पई है। घर घर दे विच रुख लगाए जा रहे हैं और इत्थों तक भी कि कुछ बॉल्स बना दित्तियां गईयां ने बीजां दियां, ते उन्हां बॉल्स दे विच बीज लुके हुंदे ने और इन्हां बीजां नूं जदों तुसी किते फर्टाइल जमीन दे उपर बरसात दे मौसम दे विच बस सुट्टी दिंदे हो ना, ते तां वी बूटे उगण दी बहुत सारी उम्मीद हो जाती।

0: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत आज भारत ऑस्ट्रेलिया दरमियान मैच खेडा जाएगा। इस दा सीधा ऑफ ट्यूब रनिंग कमेंट्री तो सुनोगे 6:30 बजे आकाशवाणी के जलंधर चैनल तो। असं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से DTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह है जलंधर केंद्र। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस समय दिन का 1 बजे आप सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सौगात प्रोग्राम सुन रहे हो रात 11:10 जो कि फोन इन व्हाट्सएप और खतां ते आधारित हुंदा है। इस अलावा तुसी रात 8:45 समाचार संध्या 9 न्यूज़ एट 9 सुनोगे। प्रादेशिक खबरां दा समा रहेगा हुण तो कुछ ही पलां बाद 1:10 ते शाम 6:20 प्रादेशिक खबरां होणगियां ते 7:40 शाम 7:30 होणगियां खबरां पंजाबी विच। ते समय 1:10 हो रहे ने, आओ सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने, नीस कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया। विक्टोरिया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ दो तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। सरकार ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो सफर से मुतालिक जरूरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान की अफवाज ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले किए हैं। और ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में बनाए गए C-295 तर्ज के हवाई जहाज की पहली परवाज मुकम्मल होने के साथ ही भारत ने जून के महीने में एविएशन के शोबे में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस तरह के 40 हवाई जहाज भारत में तैयार किए जा रहे हैं।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारत ने इस महीने मुल्क की सिक्योरिटी और खुदकफालत से वाबस्ता कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हाल ही में कोलकाता में बहरिया की एक तकरीब में शिरकत की थी जिसमें INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि इन बहरी जहाजों के डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर चीज अंदरूनी मुल्क तैयार की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जून के महीने में ही दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने भी मुल्क में ही तैयार किए गए तवील दूरी के जमीनी हमले से मुतालिक क्रूज मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। इसे DRDO की तजर्बागाहों और भारतीय सनत के साझेदार इदारों ने मिलकर तैयार किया। जनाब मोदी ने कहा कि भारत समुंदर से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने योग के बैनुल-अक़वामी दिन का भी तज़किरा किया जिसमें पूरी दुनिया के लोगों ने भारत की कोशिशों के साथ मिलकर कदम बढ़ाया। जनाब मोदी ने अहमदाबाद में मुनक़िदा आलमी योग आसन चैंपियनशिप का भी जिक्र किया जहां भारत ने सोने के 102 तमगों समेत मजमूई तौर पर 114 तमगे जीते।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तामीर में अवाम की शमूलियत की ताकत भारत के लिए एक बड़ा असासा है। जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के तनाजुर में कुछ निकात के सिलसिले में जब उन्होंने हम वतनों से अपील की तो ये अवामी शमूलियत फिर से देखी गई। जनाब मोदी ने लोगों से कहा था कि वो कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने से गुरेज करें, गैर मुल्की सफर पर न जाएं और कार पूल का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों से भी ये दरख्वास्त की थी कि वो बगैर केमिकल वाली खेती इख्तियार करें, अपने खेतों का तहफ्फुज करें और कुदरती खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जनाब मोदी ने अपनी अपील के सिलसिले में लोगों की हिमायत और हर तरह से सरगर्मी के साथ ताउन करने पर मुल्क के हर शहरी के तहत तशक्कुर का इजहार किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने

0: की अपील की थी किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: वजीर आजम ने कहा कि सरकार मुल्क भर के करोड़ों कुंभों को तहफुजाती ढाल फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुतालिका शख्स को हादसा होने की सूरत में 2 लाख रुपए तक के बीमे की सहूलत मिलती है, जबकि इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 20 रुपए है। मन की बात के इस नशरिये में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तवहुम परस्ती या अंधविश्वास के मौजू पर भी बात की। जनाब मोदी ने बताया कि आसाम में पाए जाने वाले नायाब परिंदे हरगिला को रियासत के बाज हिस्सों में किस तरह अशुभ माना जाता था। उन्होंने कहा कि यह हरगिला परिंदा फितरत को साफ रखने में अहम रोल अदा करता है। जनाब मोदी ने कहा कि अंधविश्वास की वजह से उन दरख्तों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगिला के घोंसले होते थे। वजीर आजम ने कहा कि हयातियाती उलूम की माहिर पूर्णिमा देवी बर्मन ने अवाम के जहन में पैवस्त इस गलत तासुर को बदलने का अहद किया और ख्वातीन को साइंस पर मबनी हकाइक से वाकिफ कराया। रफ्ता रफ्ता ख्वातीन उनकी मुहिम में शामिल होती गईं और एक बड़ी काया पलट का आगाज हुआ। अपने खिताब के आखिर में वजीर आजम ने पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि बारिश के पानी के हर कतरे को बचा कर रखना चाहिए। जनाब मोदी ने कहा कि कैच द रेन मुहिम की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। विक्टोरिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के सदर पैट्रिक हरमेनी के साथ 2 तरफा बातचीत की है ताकि बाहमी इश्तराक का जायजा लिया जा सके। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने इलाकाई और बाहमी मफाद के बैन अलाक्वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर सदर हरमेनी भी मौजूद थे। जनाब मोदी सेशेल्स की कौमी असेंबली से खिताब भी करेंगे और वहां रहने वाली भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे। बाद में वजीर आजम एजाजी मेहमान की हैसियत से सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। मगरबी एशिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल बिगड़ गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले से ही कमजोर जंगबंदी टूट गई है। दोनों ही मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान के 10 फौजी ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। इससे कबल अमरीका ने ईरान पर एक कमर्शियल तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला करने का इल्जाम लगाया था। उधर ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ चंद घंटों में ही जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई भारतीय इमदाद वेनेजुएला पहुंच गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया है कि फील्ड अस्पताल यूनिट इमदादी रसद दवाओं और तिब्बी साजो सामान से वहां जलजले से मुतासर इलाकों में इमदादी कोशिशों को तकवीत मिलेगी। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों को मशवरा दिया है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा उस वक्त तक शुरू न करें जब तक कि उन्हें पूरे सफर के लिए तमाम जरूरी दस्तावेजात हासिल न हो जाएं। वजारत ने यह हिदायत नेपाल में फंसे उन भारतीय यात्रियों की जानिब से मदद की दरख्वास्तें मौसूल होने के बाद जारी की है जो निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए थे। आईसीसी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में आज भारत ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। यह मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क दिफाई सामान की तैयारी पर तवज्जो मरकूज करते हुए समुन्द्र से लेकर आसमान तक तेजी के साथ महफूज और खुद कफील बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मुल्क में ही तैयार किए गए हवाई जहाज C-295 की पहली परवाज मुकम्मल होने को उजागर किया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कुछ वक्त के लिए सोना खरीदने और गैर मुल्की सफर करने से गुरेज करने नीज कार पूलिंग को फरोग देने की अपनी हालिया अपील के सिलसिले में सरगर्मी के साथ हिमायत करने पर मुल्क के शहरियों के तई तशक्कुर का इजहार किया। और ख्वातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज लंदन में ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं फौजी ब्यूरो। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आओ सुनते हैं गीत

गायक कलाकार लता मंगेशकर ते किशोर कुमार। आओ सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत। आशा भोसले अमित कुमार ते साधना सरगम नूं सुनते हाँ। फिल्म है तड़प।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा

0: कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौता

0: का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: बदलो आदत, बदलो
3: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला

0: खंडा जाके हाथ में कलगी सोहे सीसा, सो हमरी रक्षा करे कलगी तार जगदीसा।
1: हुकम पंज प्यारिया दा मना, गुरु निकले गड़ी दी वारी पना, कहिंदे देव ते हौसला तन।

0: ताड़ी मार के कहने अखीर हस देखो सूरमा वीर मैं चलिया दरा नू चीर ना चानन इंद दा गुरु साहब आवाजा मार रहे गुरु सिखा दा फड़ लो जांदा पीर हिंदी दा
1: ओ पादशाही फौज दे हर गए दूजे ते दूजा वर्गे लड़ लड़ आपस विच मर गए जगत जी नू निंद दा।

0: बैठा उते तवी तत्ती दे
1: तवी की लालो लाल हेठ अग लकड़ा दीवारा तेरे सौरे जहे चंडाल नरक वल कती दे सुन पैने नी गुरु अर्जन जी माला फेरदा बैठा उते तवी तत्ती दे
0: जेठदी दुपहरा कड़के धरती सुर के हो गई सड़के छुपे पंची आलनी बड़के बिच कख पत्ती दे सुन पैने नी गुरु पंचमनी जप मार के बैठा उते तवी तत्ती दे
1: हेठा अगू कजब दी मचे उते बैठे सतगुरु सचे सच जित नंद रूप रस रचे परे गुण शक्ति रे सुन पैने नी गुरु अर्जन जी बाणी पढ़दा बैठे उते तवी तत्ती रे
0: सरने गुरां दी लागी मियां मीर ने समाधी त्यागी पापी चंदू जहे न पागी रूं दे बाग कत्ती रे सुन पैने नी गुरु पंचम जी जप मार के बैठा उते

लिखी है पिंड पंगाला तो चिट्ठी आई है जिला फाजिलका तो, लिखन वाले ने जगतीर गिल, गुरमीत गिल, नाजम गिल, सुखमन गिल ते कमलदीप गिल ते उन्हां दे दोस्त एस के शर्मा। जिवें कि असीं तुहानूं कहा सी अगला गीत आपां सुनावांगे तुहानूं इंसाफ दी कुर्सी कुलदीप मानक दी आवाज़ विच, आओ सुनदे हां गीत।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठिया मिठिया, ते जिहड़े साडे स्रोते साडे नाल हुणे हुणे जुड़े ने, मैं उहनां दा वी दिल दी गहराई तों निघा स्वागत करदी हाँ। प्रोग्राम तुहाडा चल रहा है चिट्ठिया मिठिया, तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, ते आपां कुछ होर वी चिट्ठियां पढ़ांगे। चिट्ठी आई है टाली वाला जट्टा तों, लिखण वाले ने साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर ते गिद्दड़बाहा तों मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा। इन्हां तों इलावा आदर्श नगर मलोड़ तों राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा ते निवान शर्मा। फिर चिट्ठी लिखी है पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तों, सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, अमर लाल, दादी जसवंत कौर, सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर बूक, राज मिस्त्री, माहुआना बोदला, बलदेव सिंह ते इन्हां तों इलावा चिट्ठी आई है रावर करनाल तों, लिखण वाले ने ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। तो ये रणजीत बाबा की आवाज़ में जिहड़ा गीत है डॉलर, वो सुनना चाहते हैं। आपां तुहानू ये गीत जरूर सुनावांगे तुहाडी फरमाइश सिर मत्थे। लो जी, पेश है तुहाडा पसंदीदा गीत खास तुहाडे लई।

हाँ जी दोस्तों, कदे वक्त सी जदों डाकिए दी उडीक सारा पिंड करदा सी। अज उही उडीक असी इस शो विच तुहाड़ियां चिट्ठियां लई करदे हां। चिट्ठी लिखण दा चाह ते पढ़न दी खुशी दुनिया दे किसे भी सोशल मीडिया ऐप विच नहीं मिल सकती, ते उही तां असी कर रहे हां, तुहाड़ियां चिट्ठियां पढ़ रहे हां। हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ। अगली चिट्ठी आई है बस अड्डा हाजीपुर वाले रीका, सोनू, मैसी, बिट्टू, लाली, बाली, जीवन, टोनी, रजनीश, सोकी, ते इन तो अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है वो आई है हरदीप सिंह, जगवीर सिंह, ज्वाला सिंह, डॉक्टर तरमवीर लोडड़, मुकेश जांगू, जगसीर सिंह पंजू वालों। फिर चिट्ठी लिखी है मसीता डब्वाली तो दर्शन लौट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लौट ने। इन्हों तो अलावा चिट्ठी आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, लिखन वाले ने मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन बत्ता, पलक बत्ता, करण बत्ता, गीतू बत्ता, हार्दिक निहारिका ते वंश बत्ता। फिर चिट्ठी आई है ज़िला फाजिलका पिंड कुड़ियाना तो, लिखन वाले ने पोला सुहाग, डॉक्टर अमनजीत सिंह, सुखमंदर कौर, अमृतपाल कौर, रितमनजोत, गुरतेश्वर, अभिजोत, गुणताज ते दोस्त बलतेज सिंह कुड़ियाना ते आरपी सिंह निहाल खेड़ा वालों। हुण आपां प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ। इन्हां सारिआं दी मिली जुली फरमाइश ते आपां तुहानूं आसा सिंह मस्ताना दा गीत सुणाउण जा रहे हां, रब्बा खैर करी।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम नो अगे वधाउने आ। मैं आरजी पूनम सेठी इस वक्त चिट्ठियां पढ़ रही हां। चिट्ठियां तां बहुत सारियां ने, एक एक करके आपां सारियां पढ़ांगे। मखू फिरोजपुर तो चिट्ठी आई है, पिजन वाले ने बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज, ते ए गुरदास मान दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहते ने। आपां तुहानू थोड़ी देर च गुरदास मान दी आवाज़ विच जरूर गीत सुनावांगे। इन्हां तों अलावा मॉडल टाउन करनाल तो सुधीर नूतन, संदीप, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा ते माया कुमार ने भी गुरदास मान दी आवाज़ विच गीत सुनने की फरमाइश रखी है। बहुत सारी फरमाइश आ रही हैं जो कि गुरदास मान दी आवाज़ विच गीत दे सुनने की फरमाइश है। इन्हां तो अलावा जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया, पप्पी पाटिया ने भी चिट्ठी लिखी है। फिर मलोड़ तो जगतार गिल, परमजीत कौर गिल, गैवी गिल, अमन गिल, खाने की टाप तो शमशेर तौलकर, फिर बुर्ज सिद्धवा मलोड़ तो सरबजोत सिद्धू, जगतार जग्गा तौला खिंगरा तो। अच्छा जी दोस्तों, हुन तुहाड़ी फरमाइश नूं आपां ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करावांगे। आओ लांदे हां तुहाड़ी पसंद दा इह सुरीला गीत। इस गीत दियां सुरां सिद्धियां तुहाड़े दिल नूं छूणगियां। लओ जी मानो इस खूबसूरत नगमे दा आनंद।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियाँ पिठियाँ, ते इस प्रोग्राम नू मैं पेश कर रही हाँ, आर जी पूनम सेठी। ते दोस्तों, साढ़े बुजुर्ग दसदे ने कि जदों पिंड विच डाकिया आउंदा सी तां पूरे पिंड विच मेले वर्गा माहौल हो जांदा सी। अज उही मेला असी इत्थे लाया है। पुराने गीत, पुरानियां यादां ते मिठे जज्बात, यही तां असल खजाना है साड़ी जिंदगी दा। हुण आपां प्रोग्राम नू अगे वधाउने आ, कुछ होर चिट्ठियां पढ़दे आ। चिट्ठी आई है मंडी हरजी राम मलोट तो। लिखण वाले ने महेश गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग। ए सतिंदर बिट्टी दा गीत बोलियां सुनना चाहते ने। एना तो अलावा चिट्ठी लिखी है रेलवे कलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन तो, राजस्थान तो, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक ते पूरा डागला परिवार। फिर चिट्ठी आई है पंचकूला सैक्टर 9 तो, आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान। इन्हों तो अलावा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वह आई है करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पूचों कैंचियाँ तो। लिखण वाले ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, कुलदीप कौर, एकम, दमन, अभिजोत। फिर चिट्ठी आई है श्री गंगानगर तो, बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा। तो जिमें कि आपां तुहानूं पहले ही कहा सी, आपां सतविंदर बिट्टी की आवाज़ में आपां गीत सुनावांगे बोलियां। आओ सुनते हैं गीत।

0: बहुत ही प्यारा गीत है महेंद्र कपूर की आवाज़ विच। आओ सुनते हैं गीत।
1: मोहब्बत

श्री गुरु ग्रंथ साहिब सर्ब सांझीवालता बराबरता प्रभु प्रेम सुचजी जीवन जुगत सर्ब धर्म सद्भावना वाले अणमुले सिद्धांतों के खजाने ने इन्हां विचली उचारित बाणी धुर की बाणी है। मुखारबिंद गुरु साहबान भगत साहबान प्रभु भगती नाल एक सुर होए महापुरखां दा है। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक प्रभु उस्तत है, मनुखता वास्ते मार्गदर्शन है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी राग बिलावल विच उचारे शब्द विच मंगलाचरण उपरंत बेअंत प्रभु दे कथन तो परे गुणा बारे हवाला दिंदे हन कि हे प्रभु तू तां वड्डा राजा है,

0: सुल्तान कहा हो मिया तेरी कमन वड़ाई, जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहण न जाई। इस शब्द गायन की तसी बीबी जसपिंदर नरूला होरा ने। तू समर्थ वड़ा मेरी मत थोरी राम, पाले अकिर्त कना पूरन दृष्ट तेरी राम। सृष्टि दा स्वामी करता पुरख दयालु है, उसकी उपमा बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि असी अल्प बुद्धि वाले जीव हाँ। वह तो अपनी सम दृष्टि द्वारा अकृत कणा की भी प्रतिपालना करता है। वह बलशाली है, उसका ओज अमिट है, वह अमितोज है। मेरे हर जियो सबको तेरा वस, असा जोर नाही जे किच कर हम साकह, जो पावै तिवै बक्स। तिलंग राग विच स्थापना है, ओ बलशाली प्रभु ही मन दा आसरा है, ते उसे नू ही जपना चाहिदा है। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सर्व कला समर्थ सर्वोच्च परमात्मा दे ओज दा बल दा पसारा चौं दिशावां विच सर्वव्यापी है। उसका मेहर भरिया हथ सब सृष्टि के जीवां उपर है। जदों वह कृपा वाले कटाख खोलता है, मेहर की नज़र करता है, तो अपने प्यारियां दा हर प्रकार का दुख दर्द दूर कर दिंदा है। सुनते हैं संदीप कौर होरां पासों वार्ता। चतुर दिशा कीनू बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो।
1: ये शब्द तनासरी राग विच पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर अते शक्तिशाली शब्द है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग

181 उत्ते सुशोभित है। तनासरी महला पंजवा। चतुर दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर कर तारियो। प्रभु ने चारे दिशावां विच अपनी ताकत तपसारा किता होया है अते उसने मेरे सिर उत्ते अपना मेहर भरिया हथ रख्या है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो। उस परमात्मा ने मेरे वल मेहे दी नज़र नाल वेख्या है अते अपने सेवक दे सारे दुख दर्द दूर कर दिते हन। हर जन राखे गुरु गोविंद। गुरु गोविंद ने अपने सेवकां दी हमेशा रख्या कीती है। कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बखसंद। रहाओ रहाओ ठहराओ है केंद्री भाव है। उस दयालु अते बख्शनहार प्रभु ने अपने सेवक नू गल नाल लाके उसे सारे औकुण पाप अते गलतियां मिटा दित्ते हन। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। प्रभु दा सेवक अपने मालक ठाकुर तो जो कुछ भी मंगदा है प्रभु उसनू ओही कुछ बख्श दिंदा है। नानक दास मुक्ते जो बोले इहां उहां सच होवे। हे नानक प्रभु दा दास अपने मुहों जो भी बचन बोलदा है ओ इत्थे इस लोक विच अते उत्थे परलोक विच पूरा होंदा है। इस शब्द विच गुरु साहिब दसदे हन कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है अते उसकी ताकत हर पासे फैली हुई है। जदों ओ अपने सेवक ते कृपा करदा है तां उसदे सिर ते अपना हाथ रखदा है अते उसनू गल नाल लगा के उसदे सारे गुनाह माफ कर देंदा है। परमात्मा अपने भगतां दी हर अरदास पूरी करदा है अते भगत दे मूहों निकले हुए बचन इस लोक अते परलोक दोवां थावां ते सच्चे साबित होंदे हन। ये शब्द सानूं परमात्मा दी शरण विच रहण अते उसी रजा विच विश्वास रखण दी प्रेरणा दिंदा है। इस शब्द दे अर्थां अते भावनावां नूं बिल्कुल सही तरीके नाल दर्शाउंदे होए श्री गुरु अर्जन देव जी अते उन्हां दे अनन सेवक भाई मनजी दी एक बहुत ही प्यारी इतिहासिक घटना है। ये साखी दसदी है कि किवें गुरु पातशाह अपने सेवक ते औगुण बख्श के उसनू गल नाल लाउंदे हन अते सिख जो भी मंगदा है ओ पूरा करदे हन। भाई मंजरी जिन्हां दा पहला नाम तीर्था सी श्री गुरु अर्जन देव जी दे दर्शन करन तो बाद उन्हां ने सिखी धारण कर ली। भाई मंजरी रोज़ाना जंगल विच्चों लकड़ां कट के लियांदे सन तां जो गुरु का लंगर अतुट चल सके। एक दिन भाई मंजरी जंगल विच्चों लंगर ले लकड़ां दा पार सिर ते चुक के वापस आ रहे सन कि अचानक बहुत तेज हनेरी अते तूफान आ गया। हनेरा होण कारण उन्हां नू रस्ता नज़र नहीं आया अते ओ रस्ते विच पैंदे एक सुके खूह विच डिग पए। डिगण दे बावजूद भी भाई मंजरी ने लकड़ां दा पार हेठां नहीं रख्या। उन्हां सोचिया कि जेकर लकड़ां खूह दे पानी जां चिक्कड़ विच पिज गईयां तां गुरु के लंगर विच अग किवें बलेगी। ओह सारी रात खूह विच सिर ते लकड़ां चुकी गुरबाणी दा जाप करदे होए खड़े रहे। अगली सवेर जदों गुरु अर्जन देव जी नूं पता लगा तां ओह आप कुछ सिखां नूं नाल लै के उस खूह ते पहुँचे। खूह विच रस्सा लमकाया गया अते भाई मन जी नूं बाहर आउण लई कहा गया, पर भाई मंज जी ने पहला लकड़ां बाहर कढ़वाइयां तां जो लंगर दी सेवा विच विघन ना पवे अते फिर आप बाहर आए। जदों भाई मंज जी खूह विच्चों बाहर आए तां उन्हां दे कपड़े चिक्कड़ नाल लिबड़े होए सन, पर गुरु अर्जन देव जी

सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथै किथै मैनू लै छुड़ाई। इस शब्द का गायन किया सी भाई लखविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशेल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशेल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को

0: समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
2: ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਯਾਨੀ PSU ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੋਨੀ BMC ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਸ। ਚਾਹਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਪ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 0181-298-3036। ਈਮੇਲ ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतने के लिए। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप के मुकाबलों की पल पल की खबर। भारत के सारे मुकाबलों का सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलों का अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर के FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz से।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

साढ़े छे बजे तुसी मीडियम वेव ते सुनोगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 दे अंतर्गत भारत ते आस्ट्रेलिया दरमियान खेडे जाण वाले मैच दा अखी डिटा हाल साडे दिल्ली केंद्र तों। इस दे नाल ही साढ़े छे बजे ही तुसी साढ़े न्यूज़ ऑन AIR ऐप तों सुनोगे देहाती प्रोग्राम, जिहदे च कम्म दीआं गल्लां तों इलावा सदा बहार फलदार बूटे लगाउण बारे BS ढिल्लों जानकारी देणगे। इस तों इलावा संगीत रूपक कल दा प्रोग्राम ते मौसम दा हाल दस्या जाएगा।

रात 8 बजे तुसी सुनोगे माणयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दे देशवासियां लई प्रसारण मन की बात दा पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण।

0: पापा कॉलेज दी फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस दी कुछ पैसे असी किसे होर खाते विच रखे सन।
1: दो साल तो खाते विच कोई लेन देन नहीं होया है। हो सकता है इनऑपरेटिव हो गया होवे।
3: ता हुन बैंक जाओ जा वीडियो केवाईसी राही केवाईसी अपडेट करवाओ। खाता होवेगा एक्टिव बिल्कुल मुफ्त। चलो
0: किथे
3: एडमिशन लेन ली। खाता होया एक्टिव।
2: आरबीआई कहंदा है
4: जानकार बनो सुचेत रहो।
5: नमस्कार ये आकाशवाणी है हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों अपने विचार सांझे किए। कहा भारत ने स्वदेशी तौर पर विकसित C-295 जहाज की पहली उड़ान नाल हवाबाजी खेतर च एक वड्डी सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा सारे मंत्री विधायक ते पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कल नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे पेश होके बेअदबी विरोधी कानून ते सूबा सरकार दा पक्ष पेश करनगे। पंजाब सरकार वल्लों अमृतसर विच भगवान वाल्मीकि मंदिर नेड़े माता सीता ते लवकुश दा मंदिर बनाउण दा ऐलान। अज राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस मौके सूबे भर में 3 दिना पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। तो औरतों के ICC 2020 क्रिकेट विश्व कप में अज लंडन शामी 7 बजे भारत का मुकाबला आस्ट्रेलिया नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जून में स्वदेशी तौर पर विकसित C-295 जहाज की पहली उड़ान नाल हवाबाजी खेत्र च एक वड्डी सफलता प्राप्त की है। अज आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करदियां उन्होंने कहा कि देश में इस समय 40 होर अजिहे जहाज बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस नाल सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां अते एरोस्पेस खेतरां नूं उत्साह मिल रहा है ते नवे रुजगार के मौके पैदा हो रहे हैं ते एक आत्म निर्भर भारत का संकल्प होर मजबूत हो रहा है।
6: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान

मागूर, एनाबस जिसनों असी कोई फिश भी कहने आ, पंगास, गोल्डन जिसनों असी कॉमन कार्प भी कहने आ, तलापिया, ते इस तो इलावा चिंगा भी जिहड़ा हैगा वो इस बायोफ्लॉक सिस्टम दे लई एक सूटेबल स्पीशीज़ है। हुण दूसरे नंबर ते असी दूसरे सिस्टम की गल करिए, RAS रीसरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये भी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम दा ही एक योग विकल्प है। सो ये जिहड़ा रीसरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है ये फिल्ट्रेशन दे सिद्धांत ते ही पूरी तरह निर्भर करता है। सो इस दे विच पानी दी फिल्ट्रेशन करके उहदे विच जिहड़ियां मौजूद अशुद्धियां ने उहनां नूं पूरी तरह साफ करन तों बाद फिर तों मुड़ वरतों विच लियाया जांदा है। सो ये भी RAS रीसरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम भी एक फुल्ली कंट्रोल्ड सिस्टम है, ते इहदे विच इक खासियत है कि जिहड़ा टोटल पानी असी वरत रहे हाँ उहदा केवल 10% पानी ही असी अदला बदली कर सकते हाँ, इस तों ज़्यादा पानी असी अदला बदली नहीं करना हुंदा। सो इस तों इलावा यह है कि ये जिहड़े सिस्टम ने RAS सिस्टम ने उहनां नूं इनडोर भी तुसी बना सकते हो ते आउटडोर सिस्टम भी जिहड़े आ बनाए जा सकते आ। हुण जिवें असी सिद्धांत की गल कीती कि ये जिहड़ा पूरा सिस्टम है ये फिल्ट्रेशन दे सिद्धांत दे उत्ते बेस हुंदा है, तां जिहड़ा RAS मच्छी वाला टैंक हुंदा है उहदे विच्चों पाणी सब तों पहलां मैकेनिकल फिल्टर दे विच जांदा है, जिथे कि पाणी विच मौजूद जिहड़े सॉलिड बायोमास कुछ भी भारी जिहड़े उहदे विच पार्टिकल्स हैगे ने उह मैकेनिकल फिल्ट्रेशन दी मदद दे नाल उह निकल जांदे ने। फिर दूसरे नंबर ते बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन हुंदी है जिस दे विच बैक्टीरिया दी मदद दे नाल अमोनिया नूं दूर कीता जांदा है। फिर तीसरे स्टैप दे विच ओजोन अते यूवी ट्रीटमेंट दे नाल जिहड़ियां होर बचियां खुशियां गैसेस या अशुद्धियां ने उहनां दा सफाया कीता जांदा है। सो ये तीन स्टैप्स करन तों बाद अखीर दे विच जिहड़ा पाणी है उहनूं फिर तों फिश टैंक दे विच पा दित्ता जांदा है। पर फिश टैंक दे विच इह पाणी नूं मुड़ पाउण तों पहलां सानूं इक चीज़ दा ध्यान रखणा है कि उस पाणी नूं चंगी तर्हां इरेशन करनी है तां कि उहदे विच मौजूद जिहड़ी कार्बन डाइआक्साइड है उह निकल जाए ते ऑक्सीजन दी भरपूर मात्रा जिहड़ी है उह पैदा हो सके। सो इह इक खास महत्वपूर्ण जिहड़ा स्टैप है इस दे विच जिहड़े साडे किसान वीर ने उहनां ने ध्यान रखणा है। ते हुणे जिवें असीं गल कीती कि सिस्टम असीं इनडोर भी बणा सकदे हाँ ते आउटडोर भी बणा सकदे हाँ, जिहड़े RAS आउटडोर बने हुंदे ने कई वारी उहनां दे विच की हुंदा कि पाणी दी मात्रा घट जांदी है वाष्पीकरण करके, या कई वारी पाणी छलक जांदा है, या किसे होर कारण करके जिहड़ा पाणी है उह घट जांदा है, तां उस केस दे विच असीं थोड़ा बहुता पाणी है जिहड़ा उहो बाहरों पा सकदे हाँ। पर इस तों बिना असीं उस पाणी दे विच होर कोई अदला बदली या कोई बाहरों पाणी असीं उहदे विच नहीं पाउणा है। जेकर हुण असीं RAS टैंक दे विच मच्छी उत्पादन की गल करिए तां उह दो तीन चीज़ां ने जिहड़ियां उहनां ते मतलब निर्भर करदी है जिहड़ा सानूं ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सब तों पहले नंबर ते है कि खुराक दी मात्रा, क्योंकि असीं गल कीती कि पूरी तरह कंट्रोल्ड सिस्टम है इहदे विच कुछ भी चेंज अदला बदली नहीं हुंदी है, तां खुराक दी मात्रा जिन्नी मच्छी दा बायोमास तलाअ दे विच हैगा है उस दे हिसाब दे नाल ही सानूं कैलकुलेट करके जिहड़ी खुराक दी मात्रा उह पाउणी चाहीदी है। दूसरे नंबर ते खुराक दी गुणवत्ता, खुराक दी गुणवत्ता भी एक अहम जिहड़ा रोल है भूमिका उह अदा करदी है जिहड़ी उहदी पाणी दी क्वालिटी दे विच उहनूं मेनटेन रखण दे लई। ते तीसरा जिहड़ा सब तों महत्वपूर्ण सिस्टम है उह है फिल्ट्रेशन सिस्टम, एक सही तरह सुचारू ढंग नाल कम करदा होया फिल्ट्रेशन सिस्टम RAS दी बैकबोन असीं कह सकदे हाँ, क्योंकि पूरा सिस्टम इहदा जिहड़ा सिद्धांत है उह फिल्ट्रेशन ते ही निर्भर करदा है। हुण जे असीं फिल्ट्रेशन दी भी गल कीती है तां इहदे नाल इक होर जिहड़ा जरूरी तत्थ जिहड़ा जुड़िया होया जिहड़ा साडे मच्छी पालकां नूं ध्यान रखणा बहुत जरूरी है उह इह है कि इक लगातार पावर सप्लाई जिहड़ी है उह मुहैया करवाणी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तर्हां ही फिल्ट्रेशन सिस्टम बंद होएगा तां इह RAS जिहड़ा साडा सिस्टम है उहदे विच प्रॉब्लम आ सकदी है ते मच्छी दी जिहड़ी सेहत है उह खराब हो सकदी है ते उहदी मौत भी हो सकती है। सो इस करके जिहड़े इह प्रबंधन अभ्यास ने साडे मच्छी पालकां नूं इह जरूर करने चाहीदे ने जिहड़े भी मच्छी पालक RAS सिस्टम करना चाहुंदे ने या कर रहे ने। सो इस तों इलावा जदों हुण असीं गल करदे हाँ कि RAS सिस्टम दे विच असीं किस तर्हां दीआं जिहड़ियां मच्छियां ने उहनां नूं पाल सकदे हाँ, तां RAS दे विच असीं उह मच्छियां नूं प्रजातियां जिहड़ियां असीं चूज़ करनियां ने जिहड़ियां कि ज़्यादा जिहड़ी घनता हैगी आ हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है उहनूं सहन कर सकदियां ने, ते उहो जिहियां स्पीशीज़ असीं इहदे लई RAS सिस्टम लई वरत सकदे हाँ, जिवें कि तिलापिया है, पंगास है, या होर भी स्पीशीज़। इह खेतर तों खेतर दे हिसाब नाल जिहड़ियां ने प्रजातियां उह

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे कीते। कहा भारत ने जून च स्वदेशी तौर ते विकसित C-295 जहाज़ की पहली उड़ान नाल हवाबाजी खेतर च एक वड्डी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं वातावरण सुरक्षा च उन्हां दी अगवाई लई सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाल सम्मानित किया गया। भारत ने कराची विच हुई हालिया घटना संबंधी पाकिस्तान वालों लगाए इल्जाम नूं रद्द किया। कहा पाकिस्तान नूं अपने खेतर च मौजूद दहशतगर्दी ढांचा खिलाफ़ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए है। देहाती विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण नूं साकार करन विच पिंडां दी केंद्री भूमिका ते दा जोर। भारत ने अहमदाबाद च मर्दां दे AVC वॉलीबॉल कप च बहरीन नूं 3-1 नाल हरा के कांसे दा तमगा जित्तिया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जून में स्वदेशी तौर पर विकसित C-295 जहाज़ की पहली उड़ान नाल हवाबाजी खेतर च एक वड्डी सफलता हासिल की है। आज आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम च देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार सांझे करदिया श्री मोदी ने कहा कि देश च इस समय 40 होर अजिहे जहाज़ बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस नाल सूखम छोटे ते दरम्याने उद्यमां अते एरोस्पेस खेतरां नूं उत्साह मिल रहा है अते नवे रुजगार के मौके पैदा हो रहे हैं।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बारे भी गल की जिसनों दुनिया भर में मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में जनतक भागीदारी भारत लिए बहुत खुशी की गल है। उन्होंने कहा कि पछमी एशिया में जंग वर्गी स्थिति के मद्देनज़र कुछ थावां नागरिकों ने सोने की खरीददारी विदेश यात्रा अस्थाई तौर पर मुलतवी करके एकजुटता का प्रदर्शन किया। श्री मोदी ने नागरिकों को खेतीबाड़ी वाली जमीन को रसायणों से दूर रखने और कुदरती खादों की वरतों करके अपनी जमीन की वध तो वध खेती करने की अपील की। उन्होंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोगों ने कारपोलिंग संबंधी अपने तजर्बे सांझे किए हैं। एक दिशा च यात्रा करने वाले बहुत सारे लोगों ने कारपोलिंग की वरतों कर के इकट्ठियां यात्रा करन नूं तरजीह दित्ती है। उन्होंने तसली जाहिर की थी कि भारत इस विश्वव्यापी संकट का सामना करने लई एकजुट है। श्री मोदी

0: ने विश्वास प्रगट किया कि जनतक भागीदारी की यह शक्ति देश को मजबूत करेगी ते सफलता वाल लै जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश भर के लखां परिवारों को दुर्घटना बीमा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा,
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: आखिर च पानी की संभाल बारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मीं दे पानी की हर बूंद नूं बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन मुहिम विच कोई ढिल नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अज सेल्स की अपनी सरकारी दौरे दौरान वातावरण सुरक्षा ते पायदार विकास च उन्हां दी अगवाई लई सेशेल्स दा सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन आफ द ब्लू होराइजन नाल सम्मानित कीता गया। सेशेल्स दे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हेरेमनी ने प्रधानमंत्री मोदी नूं इह पुरस्कार भेंट कीता। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हां दा शुक्रिया अदा करदा आख्या,
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ अजय शंकर ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सेलेश दे सर्वोच्च सम्मान गार्डियन आफ द ब्लू होराइजन नाल सम्मानित कीते जाण ते वधाई दित्ती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि वकारी मानता भारत की जलवायु कार्रवाई चुगिरदी की सांभ संभाल और निरंतर विकास को अगे वधाउण विच प्रधानमंत्री की दूरदर्शी अगवाई को दर्शाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह सम्मान दुनिया विच भारत के वधदे प्रभाव को दर्शाता है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-EIR जलंधर। यूट्यूब पर साडा चैनल है @EIR जलंधर। भारत ने कराची विच हुई हाली घटना संबंधी पाकिस्तान वालों लगाए गए इल्जामों स्पष्ट तौर पर रद्द करदिया उन्होंने बेबुनियाद दसिया। पत्रकारों के सवालों के जवाब च विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि दूजियां ते उंगल चुकन की बजाय पाकिस्तान नूं अपने अंदर झाती मारनी चाहिए है ते अपने खेत्र च मौजूद दहशतगर्दी ढांचा खिलाफ़ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नूं दहशतगर्दी नूं अपनी सरकारी नीति के साधन वजों वरतन की प्रवृत्ति तो छुटकारा पाना चाहिए है। खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने पिंडा की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिता है। आज नवी दिल्ली राष्ट्रीय पेंडू विकास सम्मेलन को संबोधन करदे श्री चौहान ने गल आखी। उन्होंने कहा कि पेंडू विकास को तेज़ करने के नालों नाल पेंडू मजदूरों लिए रोजी रोटी की सुरक्षा को यकीनी बनाने वास्ते विकसित भारत ग्रामीण योजना तहत 1,51,000 करोड़ तो वधी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा,
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: केंद्रीय गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अज गुजरात के गांधीनगर विच पीएम फैमिली केयर ट्रैकर ते आजमाइशी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। एकीकृत डिजिटल मंच जन्म रजिस्ट्रेशन नंबर ज आबा आईडी नाल जुड़े एक विलक्षण आईडी की वरतों करके गर्भ अवस्था तो लैके 18 साल तक की उम्र लाभपात्रियों की सेहत पोषण ते सिक्ख्या नूं ट्रैक करेगा। इस मौके गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 12 सालों विच देश च सेहत खेत्र विच महत्वपूर्ण बदलाव हुए ने। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नवी दिल्ली च केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई परिषद की 16वीं मीटिंग च अनीमिया मुक्त भारत मुहिम लई कार्यशील दिशा निर्देश जारी करेंगे। ये शुरुआत अनीमिया मुक्त भारत तो अनीमिया मुक्त भारत मुहिम च तब्दील होने कारण अनीमिया खिलाफ देश की लड़ाई विच एक महत्वपूर्ण मील पत्थर साबित होगा। यह कदम कुपोषण नाल नजिठण ते एक सेहतमंद राष्ट्र के निर्माण प्रति सरकार की अटुट वचनबद्धता नूं भी दर्शाउंदा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अज चीला पिंड विच यमुना घाट सफाई मुहिम च हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने वड्डी गिनती विच नौजवानां वलंटियर्स ते स्थानक नागरिकां दे नाल इस समागम च स्वै इच्छा दे नाल हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यमुना दिल्ली दी याद, सभ्याचार ते जीवन

है। दिल्ली सरकार इस नूं साफ ते शुद्ध रखण लई विज्ञानक टिकाऊ ते व्यापक पद्धर ते लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस सेवा मुहिम च शामिल हरेक वलंटियर दा धन्नवाद किया। उन्हां दिल्ली दे हर परिवार नूं किसे भी दिन यमुना नूं कुछ समां समर्पित करन दी अपील कीती। भारत ने अज अहमदाबाद विच मर्दां दे एवीसी वॉलीबॉल कप विच तीजे स्थान दे प्ले ऑफ च बहरीन नूं 3-1 नाल हरा के कांसी का तमगा जितया। यह 40 सालों विच टूर्नामेंट विच भारत का पहला तमगा है। इस तो पहला भारत सैमीफाइनल च इंडोनेशिया तो हारन तो बाद फाइनल च जगह बनाउन तो थोड़े जिहे फर्क नाल खुंझ गया सी। उधर औरतों के आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन च ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया नाल हो रहा है। भारत ने टॉस जीत के पहला बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिडारी लियोनस मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों गोल करने वाले दुनिया के पहले खिडारी बन गए हैं। आज ग्रुप जे के अपने आखिरी मुकाबले अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 नाल हराया। इस दे नाल विश्व कप में मेसी के गोलों की गिनती 19 हो गई है। आखिर च खास खबर एक बार फिर तो

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन

0: वे संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष

0: देशों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना

धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट धातुन न कतेट

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल played on tabla by Sudhir Pandey. He was accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi

0: स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
0: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी प्रेजेंट लय विन्यासम ऑन मृदंगम बाय श्री एन एस कल्याण रामन।
1: पारंपरिक संगीत परिवार में जन्मे श्री एन एस कल्याण रामन आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध मृदंग वादक है। उन्होंने बाल्यावस्था से ही मृदंग वादन पर गहरी रुचि दिखाई और अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण श्री एम के आर प्रसाद से प्राप्त किया। बाद में उन्होंने विख्यात मृदंग विद्वान श्री दंडमुड़ि राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
0: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। He showed keen interest in mridangam from a very young age and received his initial training under Sri M.K.R. Prasad. He later underwent advanced training under the renowned gurus Sri Dandamodi Ramohan Rao and Sri K. Veerabhadra Rao.
1: Sri N.S. Kalyana Raman ne Dr. M. Balamurali Krishna, Sri T.V. Sankar Narayan, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Brothers aur Hyderabad Sisters jaise anek prakhyat sangeetajnyon ke saath sangat kiya. उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
0: श्री एन एस कल्याण रामन हैज एकॉम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टी वी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक अकादमी।
1: श्री एन एस कल्याण रमन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटि पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
0: He is a top grade artist of Akashvani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashvani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
2: Aaj ke karyakram mein Sri NS Kalyanaraman mridangam par अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
0: टुनाइट श्री एन एस कल्याण रामन बिगिन्स हिज लय विन्यासम ऑन मृदंगम विद मिश्र जाति झंपे तालम।

0: हम लाइव विन्यासम का समापन संकीर्ण चापुताल से कर रहा है।
1: श्री एन एस कल्याण रामन कंक्लूड्स हिज लाइव विन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापुतालम।

0: आप रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना

0: कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured.

जी दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह तुसी अपनियां जड़ियां है वो सानू इसी तरह अपनी फोन कॉल्स के नाल पहुँचते रहना। 0181-2342-171 नंबर डायल करके। लो जी, कॉलर की गल की, तो कॉलर भी आ गए ने। देखिए जी, कि दोस्त ने। हैलो,

0: जी नमस्कार, जी नमस्कार। सब तो पहले तो अपना तारुफ करवाओ, कौन बोल रहे हो, कितने बोल रहे हो?
1: सर मैं कांता वर्मा बोल रही जी, गांव छटेरा तहसील कसौली जिला सोलन हिमाचल से जी।
0: जी कांता वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगात प्रोग्राम में।
1: बिल्कुल जी सर, आप बहुत अच्छी तरीके से लिसनरों से बात करते जी और बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम पेश करने के लिए।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी। अभी आप जो हमारे को भजन सुना रहे थे ना, चढ़ लइयां पहाड़ियां तेरियां, माता रानी दी एक भेंट सुना रहे सी आपा।
1: हम बिल्कुल जी, हम वैष्णो देवी गए थे जी।
0: ओ जय माता दी, जय माता दी।
1: हम बहुत प्यारे दर्शन हुए जी वहाँ पे, और कठिन चढ़ाई है जी, और सारे जो जी जितने भी लिसनर हमारे सुन रहे और जो सच्चे मन से जाते सर जी, वो वहाँ पे मतलब पूरी मुरादें पूरी करके आते हैं
0: पूरी
1: जी, रोते
0: करते
1: रोते
0: हैं
1: जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं जी।
0: जी, बिल्कुल। देखो जी, माता रानी ने मुरादां पूरियां करनियां ही हैं जे तुसी सच्चे मन दे नाल उन्हां दे दर्शन करोगे।
1: बिल्कुल जी, पैदल हमने पूरी चढ़ाई पैदल चढ़ी जी, और सुबह 6 बजे लग गए हम चलने और 5 बजे पहुंचे शाम को, और भैरव बाबा के भी दर्शन किए जी। बोलते भी उनके दर्शन करने जरूरी होते हैं, फिर यात्रा सफल होती है जी।
0: यात्रा सफल होती है, बिल्कुल। और आपने इतनी चढ़ाई करी है और उसके बाद आप थक भी गए होंगे जब आप
1: हाँ जी, थक भी गए। हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए, जब माता रानी के दर्शन करने जाओ ना, तो अपने आप शक्ति देती है वो।
1: बिल्कुल जी, वहाँ कुदरती है सर जी, बहुत चमत्कार होते हैं। बीच बीच में हुए ना हमारे साथ, तो हम हैरान हो गए, मतलब वाकई है कुछ वहाँ, यहाँ माता कहाँ बसी है, मतलब इतने ऊंचे पहाड़ पे ना सर जी।
0: जी बिल्कुल।
1: बिल्कुल
0: देखिए, आप वहां पे दर्शन करने गए हैं और सभी के लिए आपने दुआएं मांगी होंगी, हम ये उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल जी, सबके लिए मैं तो बोलूँगी, सब जाओ और पैदल यात्रा करो। अगर नहीं पैदल यात्रा होती है, चलो किसी की मजबूरी होती है, तो घोड़े वगैरह वहाँ पे और हेलीकॉप्टर
0: हाँ
1: वहाँ पे सुविधा है जी,
0: जी
1: और ट्रॉली की भी है। जब भैरव मंदिर को जाना हो तो ट्रॉली की भी सुविधा है सर जी वहाँ पे,
0: जी बिल्कुल।
1: पर टाइम से होती है जी, वहाँ बुकिंग हो जाती है मेरे ख्याल पहले ना, जो
0: हाँ हाँ
1: हेलीकॉप्टर
0: हाँ
1: की होती है ना जी,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: इसकी बुकिंग पहले हो जाती जी, क्योंकि हमारे को पता नहीं था ऐसा। और जो ट्रॉली की है वो 4 बजे से पहले पहले होती जी, 5 बजे से बाद कोई ट्रॉली नहीं होती ऊपर के लिए
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: ट्रॉली।
0: जी बिल्कुल। तो कांता जी, बहुत अच्छा लगा, और आप माता रानी के दर्शन करके आए हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सभी जो हैं वो जाके दर्शन करेंगे, तो माता रानी जिस जिस को बुलाएगी वो जरूर जाएंगे वहां पे दर्शन करने
1: बिल्कुल
0: के लिए।
1: जी, क्योंकि मजा आ गया हम सर जी जब दर्शन किए ना अंदर माता के, तो गुफा देखी ऐसा लगता है जैसे हम यूट्यूब से देखते थे, तो ओरिजिनल देखा तो बहुत मजा आया जी देखने का।
0: ओ
1: हाँ
0: तो आज
1: जी
0: फिर कौन सी फरमाइश लेके आए हैं कांता जी?
1: सर, आप अपनी पसंद का सुना दो जी, बढ़िया सा सॉन्ग सुना दो लिसनरों के लिए, जितने भी हमारे इस टाइम सुन रहे प्रोग्राम जी।
0: चलिए सुनाते हैं जी आपको ये गीत। शुक्रिया।

0: जी दोस्तों, गल मुखी ना सज्जन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। क्या बात है जी, बिल्कुल सही गल है जी। रात जिहड़ी है उह तां मुक जाणी है, पर सज्जन नाल गल्लां नहीं मुकणियां, क्योंकि सज्जन नाल गल्लां जिन्नियां आपां करांगे उन्नियां ही घट है। मौका कदी कदी लगदा है ना, पर यह जिहड़ी रब दी रात हुंदी है, इसने ते अपने वक्त दे मुताबिक खत्म हो जाणा है। रात दे बाद सवेर चढ़नी चढ़नी है, तो जदों सवेर हो जाती है उदों फिर ये सोचते ने मुहब्बत करन वाले, प्यार करन वाले, भी ये रात मुक क्यों गई। खैर जी, साडा प्रोग्राम जिहड़ा है ये मुकना है 1 बजे। तुसीं इस प्रोग्राम च जरूर पहुँचना है। 0181-2342-171 नंबर डायल करके प्रोग्राम सौगात दे विच तुहाडा दोस्त शाम शर्मा तुहाडी उड़ीक कर रहा है। जिवें साडे दोस्त पहुँचे ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो,
1: हैलो
0: जी, स्वागत, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? जनक राज जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुरदासपुर तो बोल रहे हो। जनक जी, प्रोग्राम अक्सर सुनते रहने हो? रोज सुन दे हो, ते कॉल कदी कदी लगाने हो? जी क्या बात है जी, बिल्कुल ये तो गल सही है जी। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होंगी, जे तुसी कोशिश करते हो साढ़े तक पहुँचते हो तो जरूर तुहाडी पहुँच साढ़े तक होएगी। अज फिर जनक जी केड़ी फरमाइश लेके आए हो? मेरे दोस्त होम हम आके चलन गे। क्या बात है जी, बहुत
1: खूबसूरत।
0: देखो ये गल ठीक है जी, शिव कुमार बटालवी का गीत लिखा हुआ, आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ के विच गीत थोड़ी नज़र करांगे। गल सही है, जो कोई दोस्त मित्र नेड़े दा चले जाता है ना, उदों सानू बहुत ज़्यादा दुख लगता है, क्योंकि साड़ी सज्जी बाँह हुंदी है साड़ा दोस्त, तो उस वेले जो चले जाए तो ये दुख तो लगना ही है। पर गीत थोड़ी नज़र कर रहे हैं जी, सुनते हैं, थोड़ी पसंद है गीत। शुक्रिया जी कॉल करने लई जनक जी।
1: बहुत बहुत थैंक यू जी।
0: ओके जी।

0: क्या बात है जी, खूबसूरत गीत आसा सिंह मस्ताना की आवाज़ दे विच आपां सारयां ने सुनिया। जदों मेरी अर्थी उठा के चलणगे, सब दोस्त हुम हुमा के चलणगे। इस तरह के गीत सिर्फ ते सिर्फ तुसी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो सुन सकते हो। DTH की आकाशवाणी पंजाब सेवा दे जलंधर केंद्र तो यह प्रोग्राम एक बजे तक इवें जारी रहेगा और तुसी इस प्रोग्राम च आ सकते हो। 0181 2342 171 नंबर डायल करके। लो जी कॉलर आए ने। हैलो जी, सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सर जी मैं राजू बोल रहा जी, चंडीगढ़ तो।
0: जी राजू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी स्वागत है।
0: किवें चंडीगढ़ दे हाल ठीक ने?
1: बहुत वधिया ने सर जी, गर्मी बहुत है।
0: हां गर्मी दा देखो जी हुण जोबन ते इस वेले।
1: हां जी हां जी, 2 तारीख नु दस देंगे ते बारिश पौगी भारी जी।
0: बिल्कुल जी, देखो ये हुण ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਏ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ?
1: ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਈਏ।
0: ਲਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ।
1: ਧੰਨਵਾਦ।

0: जी दोस्तों, दोवें चली गए स्कूले काम माड़ा नहीं। बिल्कुल जी, ये तो वैसे उड़ा एड़ा एडी सानू पूरा सिखा गए ने, और पंजाब च रहना तो उड़ा एड़ा ईडी तो आना चाहिए ना। अजकल रवाज पता की हो गया, रवाज ये हो गया कि असी कोई भी गल करते हैं अपनी पंजाबी बोली नू भुलते जा रहे हैं। असी हमेशा बोलन लग जाने हिंदी दे विच, बच्चों भी असं हिंदी सिखाई जाने हैं, बच्चे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, असं पंजाब च रहने हैं पर पंजाबी नू भुली जाने हैं। इसी करके AIR पंजाबी तुहानू पंजाबी गीत सुना सुना के तुहाडी पंजाबी होर भी मकबूल कर रहा है, तुहानू पंजाबी दे विच एक्सपर्ट कर रहा है कि उड़ा एड़ा एदी सीखते रहो। लो जी कॉलर आए ने, इन्हों नू पुछदे हैं। हैलो
1: हेलो श्याम भाई, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, जी नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: श्याम भाई बिट्टू बोल रहे, दूर बच्चे बैठे बंगू सी जंगल चल जी।
0: वाह जी वाह, बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: अपनी बात सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, गल्ला बातें तो अच्छा है कि
0: जी। बहुत शुक्रिया जी। बिट्टू जी तुसी जदों पहुंचते हो ना, तो वैसे तो हुणे हुणे आए सीगे, दोस्त कहिंदे कि हाँ कहिंदे कि असीं बिट्टू जी नूं भी लैके जाणा नाल। बिल्कुल, मैं कहा बिट्टू जी नूं तो नाल लैके जाणा ही है। हाँ बिल्कुल, कहिंदे जी आपां सारिआं नूं नाल लैके जाणा। मैं कहा तुसीं लिस्ट बनाओ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰੰਗਿਆ, ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਸੁਣਾਨੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਓਕੇ ਬਾਏ ਜੀ।

0: करो। देखो मनजीत जी की तबीयत शायद इसी करके खराब हो रही है कि हाले तक पार्टी नहीं मिली है। देखो ना थोड़ा बहुत अलोम विलोम करो, योगा करो, तो इस दे नाल भी फर्क पैंदा है। जदों तुसी अलोम विलोम करोगे ना, तो जे रोज करोगे तकरीबन 3-4-5 मिनट करोगे, तो उस दे नाल बीपी च बहुत ज्यादा फर्क पैंदा है। बाकी जिहड़ा टेंशन है बिल्कुल ना लो, पार्टी जल्द मिल जाएगी तुहानू।
1: अच्छा,
0: क्योंकि जो टेंशन बिल्कुल साड़ी जिम्मेवारी है, जो इंसान टेंशन लैंदा है ना। हाँ हाँ, बिट्टू भाजी दे नाल जाणगे बिने रौनकां किद्दां लगणगियां, जे रौनकां नहीं लगणियां फिर तां जे बिट्टू भाजी नहीं गए तां। इस करके तो रौनकां तो उन्होंने लानी है। हाँ ते बिल्कुल जी, असी सोने रब अगे दुआ करने हैं कि तुसी जल्द तो जल्द ठीक हो जाओ, ते तुहानू सोहणिया सोहणिया। हाँ बिल्कुल, असी भी यही सोहणे रब अगे दुआ करने हैं कि तुसी जल्दी ठीक हो जाओ और फिर पार्टियां लई हो जाओ तैयार। है
1: ठीक है जी।
0: अज फिर केड़ी फरमाइश लैके आए हो?
1: अज फिर ओही है, तेरियां मोहब्बतां ने मार छड्डिया, दस की करां,
0: दस मैं की करां। गल सही है जी। देखो मोहब्बत करके तो आप सारे जाने है, इसे करके तो कहने हैं कि मोहब्बत करो उनसे जो आपकी मोहब्बत की कदर करे।
1: और मोहब्बत करो सच्चे दिल नाल,
0: है
1: ना।
0: हाँ।
1: प्यार नाल।
0: इसी यही गल तो सारे, हाँ यही गल सारे कहते ने कि मोहब्बत करो जरा कदर भी करे। तो सुनाने तुम गीत, तेरिया मोहब्बत ने मार सुटिया दस मैं की करा, नरेंद्र बीबा की आवाज।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: ओके जी। मोहब्बत

जी दोस्तों, दुनिया दी कादी परवाह, आ जा आप नचिए मजा चुने। बिल्कुल सही है जी, प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी भी दुनिया दी परवाह कीते बिना साडे इस प्रोग्राम च आ सकते हो। 0181 23 42 171 नंबर डायल करके प्रोग्राम सौगात 1 बजे तक इसी तरह चलता रहेगा। तुहाड़ियां फोन कॉल्स दे नाल इस प्रोग्राम नूं आपां पंजाबी गीतां दी फरमाइश पूरी करनी है। तुहाड़ी फरमाइश करोड़ां दोस्तों तक तुहाड़ी आवाज़ जानी है, इस करके तुसी इस प्रोग्राम च जरूर आओ। लो जी कॉलर आए ने। हैलो जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो? जी जी, रवि कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। बहुत शुक्रिया जी। तुसी सुनाओ, सेहत ठीक है? हूं बहुत शुक्रिया जी, साड़ी तुसी हौसला अफजाई की, इस दे लई तुहाडा बहुत बहुत तहे दिल तों शुक्रिया। था हां बिलकुल बिलकुल जी, जदों सरकार ने सानू बुला लेना सी आ जाना। ते तुसी दसो होर रवि जी, तुहाडी सेहत ठीक है हुण? हूँ ठीक है, अगे नाल बहुत फर्क पै गया है जी। चलो असी भी उस सोहने रब अगे दुआ करने कि साडे सारा परिवार दे विच जिन्हें भी साडे लिसनर्स ने वो सब तंदुरुस्त रहन, उन्हां नूं तत्ती वाह ना लगे। जी बिलकुल जी, रवि जी साडे बहुत पुराने लिसनर ने सानू। हाँ बिलकुल, तुसी साडे नाल ज्यादा ही हो गए होने, साडे प्रोग्राम नाल तुसी जुड़े हुए हो और इसे तरह जी सानू किते किते कॉल भी करते रहने हो। अज फिर केड़ी फरमाइश लेके आए हो? पम्मी बाई दियां बोलियां सुनानियां जी। शुक्रिया जी कॉल करन दे ले जी। ओके जी।

0: जी दोस्तों, तुसी सुनिए बोलियां। और वैसे जी बोलियां दे विच ना ये जड़ी अड्डी है ये भी थड़कन लग जाती है, और उस वेले फिर अड्डी थड़कती है जदों इदां दियां सोहणियां सोहणियां बोलियां जदों साडे पम्मी बाई जी बोलियां पाण, फिर साडी अड्डी ना थड़के, एवें किवें हो सकदा है। लो जी फिर चलदे हां जी कॉलर वाल, साडे दोस्त आए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ये कोशिश करके पहुंचे ने साडे कोल। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: हाँ जी राम जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: देसराज ड्राइवर, तहसील टवाणा, जिला फतेहबाद, हरियाणा।
0: वाह जी वाह, देसराज जी ड्राइवर साहब, होर सुनाओ हाल चाल, ठीक ने?
1: बहुत वधिया ने जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ?
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ?
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
0: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ?
1: ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
0: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋ।
1: ਲੋ
0: ਜੀ ਸੁਣਾਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀ।

हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, दरवाजा खोल देने हैं जी, एक मिनट ठहरो। लो जी, कुंडा खोल देता, आओ अंदर। कौन जी? ओहो, मनजीत मणि फाजिल का तो आए ना, स्वागत है जी प्रोग्राम च। मनजीत मणि जी बिलकुल आ गए ने जी, बिलकुल ठीक है जी। तुसी दसो, तुहाडे हाल चाल किवें दे ने? ठीक हो? तबीतां सब सेहतां ठीक ने? ओए, ये की गल हो गई, इन्हां दी कॉल ही कट गई। साडे नाल गलबात करदे करदे दरवाजा भी असी खोलिया ते मनजीत मणि जी आ भी गए, साडे नाल हले गल्लां बातां भी कर रहे सन ते गीत दसणे लगे, ते इन्हां दी कॉल डिसकनैक्ट हो गई। लो जी, फरमाइश दस गए सी, सुनाने गीत, इन्हां दे पसंद आए गीत, निमरत खैरा दी आवाज़ दे विच।

गल बात सी पर तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुए जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औलाद सी पर तू ना समझ सकी।

तू ना समझ सकी, ए साहां दी मुलाकात सी पर तू ना समझ सकी, कुछ अणछुहे जज्बात सी पर तू ना समझ सकी, साडी कल्यां दी औरात सी पर तू ना समझ सकी।

करवत पला न करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। हौ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मुख काहे को मारे। ए बिरहो पिजे बोल भगत कबीर जी द्वारा उचारित ने। भगत कबीर जी दी बाणी उपदेशात्मक है। आप जी ने प्रभु नू मन अर्पित करके प्राप्त कीता सी। आप जी अनुसार अकाल पुरख प्रभु नू मिलन दे लई हिरदे विच्चों विकारां रूपी कावां नू उड़ाउणा पैंदा है। आप जी समाज विच पुरातन प्रचलित एक प्रथा नू प्रतीक बना के उस अकाल पुरख प्रभु नू सद्दा दिंदे ने कि हे विकार रूपी कागा, उड़ जाओ, क्योंकि मेरे हिरदे घर विच प्रभु ने आना है। उड़ो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। सरवण करदे हां भाई अनूप सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

उड़ो ना कागा कारे, बेग मिली जाए अपने राम प्यारे। इस शब्द अगायन की तासी पाई अनूप सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। भगत कबीर जी निम्रता दे घर विच आके अपने आप नू अपराधी बयान करदे ने। दरअसल मनुखी बिरती है ही ऐसी, जिस प्रभु ने ए जिंद ए जान ए शरीर दिता है उस नाल तां प्रेम कीता ही नहीं, उदी भक्ति उदी साधना कीती ही नहीं। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। सरवण करदे आं भाई सरबजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया ए शब्द।

0: गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ पगत नहीं साधी। इस शब्द गायन की तासी पाई सरबजीत सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जगसीर सिंह।
1: राम कली बाणी भगतां की, कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरन तारन चिंतामन, एक निमख ना एह मन लाया, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं साधी, रहाओ पर तन पर तन परती निंदा, पर अपवाद ना छूटै, आवा गवन होत है फुन फुन, एह प्रसंग ना टूटै, जिह घर कथा होत हर संतन, एक निमख न कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मो माही, दया धर्म अर गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत बछल पै हारी, कहत कबीर पीर जन रख हो, हर सेवा करो तुम्हारी। एह पावन शब्द भगत कबीर साहब जी का राग रामकली विच उचारण किया होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 971 ते सुभायमान है। इस शब्द विच मनुखी मन की तस्वीर खिंची गई है कि जीवन मनोरथ वालों बेपरवाही, आकृत घनता, आलस ते मैले फुरने हो चुकी आत्मक मौत दे संकेत हन। प्रेमा भगती दी अनहोंद ते विकारां दी संगत कारण गुरु दी सेवा अते दया जो दैवी गुण हन साडे अंदर प्रफुल्लित ही नहीं हुंदे। जीवन दी कामयाबी लई प्रभु अगे अरदास, उद्दम ते उत्साह वड्डे साधन हन। इस शब्द दे रचनहारे भगत कबीर जी मध्यकाल दी भगती लहर दे बड़े प्रसिद्ध प्रतिभाशाली समाज सुधारक, रब्बी पुरख, निर्गुणवादी भगत सन। उन्हां दा जन्म बनारस दी धरती ते होया। एक दिन सवेरे वड्डे तड़के कबीर साहब जी उस रस्ते च लेट गए जिथों रोज़

0: कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी। आखिरी पैरेच बेनती है अरदास है कि हे प्रभु दीना ते दया करन वाले भगती नू प्यार करन वाले हे पै हरन मैनू दास नू विकारां दी बिपता तो बचा लै मेहर कर मैं सदा तेरी बंदगी करदा रहा।
1: गोबिंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जगसीर सिंह। भगत कबीर जी ने अपना मन ही उस अकाल पुरख प्रभु दे नाल बुण लिया सी।

ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिसकी पाओ पगत नहीं साधी। इस शब्द की व्याख्या कर रहे सन ज्ञानी जगसीर सिंह। भगत कबीर जी ने अपना मन ही उस अकाल पुरख प्रभु दे नाल बुण लिया सी। आप जी ने उस परमात्मा दे नाम दा वणज करके उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त कर ली। इंज आप जी उस प्रभु नाल प्रीत स्थापित करके मोक्ष प्राप्त कर गए। ऐसी धरती ते जो के सरापी हुई सी, हर का संत मरे हड़ अंबै ता सगली सैन तराई। भगत कबीर जी प्रभु दे नाम दा वणज करन दा सुनेहा दिंदे सन। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। सरवण करदे आं भाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़या निर्मोलक छूट गई संसारी। इस शब्द गायन की तासी पाई बहादुर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो परगास, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंच भूत वस कीने जमत ना त्रास, गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत, अगन देखत गत चरण कवल जास, सब विद मान्यो मान तब ही

0: कच्चो कंचन पयो सबद गुर सरना सुनयो बिकते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पनयो लोहयो होयो लाल नदर सतगुर जद तारा पाहन मानक करा ज्ञान गुर कहो बिचारा काठो श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए सतगुर चरण जिन परसया से पस परेत सुर नर पए।
1: जाम

0: रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरयो। रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरयो।
1: अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हर नाखत फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। शीनत बस्तर दीन बोत सार सोदाम, अपदाते राखिया गनका पर पूरे तहका श्री।

चोलना गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप प्राणी हो शब्द हर हर जपे नाम नव निध अपे रसन ऐन सरस है सत कर जानी हो खुन प्रेम रंग पाई है गुरमुख त्याइए अन्न मार्ग तजहो भजो हर ज्ञानियो बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो जन्म कुल उदर हो द्वार हर मानी हो जो तो सब सुख इत उत तुम वंशवो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी हो।

जान निदान हर मन थरो ध्यान ऐ निस करो बचन गुर हृदय थर फुन गुरु जल बिमल आथा हा मजन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निरवैर निरंकार निरभो जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुख भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत ले बलाइए फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याइए अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाइए।

सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कछ हो बरहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिए तार तज बिकार मन गय अंदर।

सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसमदी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जानम जानम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु, जिस पास बहठिया सोहिया, सब ना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा जिस पास बहठिया सोहिया, सब ना दावे साहु।

जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गोर नाम दियो रेन लाथा, मेरे मान पाज राम नाम सब अर्था, गोर पूरा हर नाम दृढ़ा।

न साधु चरण ना सेवे कबहु तेन सब जन्म अकथा जेन साधु चरण साध पग सेवे तेन सफलो जन्म सनाथा मोकौ की जदास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जैत श्री महला चौथा, घर पहला चौपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरा हीरा रतन नाम हर बसया। गुर हाथ धरयो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे। गुर नाम दियो रिन लाथा।

0: पशुतावना पशुतावना पशुतावना
1: पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुकम किए मन पावदे रह पिड़े कह जावना नंगा दो जग चाले ता दिशा खरा डरावना करो गन पछोतावना करो गन पछोतावना।

माली धान मलेछा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए।